0: क्लास तुम कुफा भी
1: सोतू सुखसाने ने रजकल मंदे मंदी तो नाम मत आकाश के आराम पिस्तले तो मुझे भी तुम कुछ बोला रहे हैं नाना का टीम नाना का काम रहे हैं एक टीम नाना के अनु ना फिक्री जाने जरूर रिस्क है यहाँ कौन को रिस्क है यहाँ को वह ये जनता के जान मंदी तो नाम मत आकाश के आराम है ये जनता रिस्क सांप ना जब फिक्री जाने मु मानने के फसल लेने देसाना को दे मनारा का ना वो सेमु सेमु जान ले फिर देसाना दे फिर मनारा का नहीं दे ये देमरा रे ना तब फिर तो सोम तांस मिरी जाने सेम जावा दे दे
2: क्या ना काफी ना सु फटारा कौन सा ये ले फिर ना काफी ना जाने मार सुता वो ना चार चार ले तीन रोग पिया तक के ना बुला चुना ये ना जाने
3: ले सुत सान ले वचने केते मादागास्कर सोनल लाको ले सुतु नतति ए सेना वतर पे सुत जिस माफतला चान सुत सान सेले सुत तना काफीना तिम्याना कर सारे तु नतति ते वाला स सीजम स स ति मोला लास ते ने सेंट साजा मापा येरेना जव यान जमाता ने मापता ना जे राके से ते तांज न तंग तंगावने
4: तना काफीना सुत ले ले उल्लाना दे तुंगचा Apa ni? Tiko nak kene ciri arah, tiap-tiap nane tiko. Arah kampan rinwe teh itu tambah tak kaskar. Teh sutun mitu san. Ye fakir reza nawasiru teh maafin nasha neto nariwa fati nawe makafit ku anti musimam cikti zaiti nawe semana sal ti san ye. Ye cuma benyan jalan famana nane tika manukan cik.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

0: तुमको लाश तुमको वाफी
1: ते मानना नी अंडरकिन आरा इकोलोजी के वोलू है ना मानने अंडरकिन आरे इकोनॉमिक फारू जानुए मानो फेरुवना जान सो के चीनी ते चारी आरुवना फुट निजू फा आताकुज़ याजा उन रो सही लांजा इकोनॉमिक सही आफा आना ny fisina valanjavaboary dia tsy fanerenan'ny olona iaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

0: गिलास तुम कफा भी
1: वोटा बोला तुम इसी बना दी रे आ सच का तो नंबर आप बात के तो आज भी योम दे कुल कुल बोला भी दे पीरोट ये तो और मनारा किसान को यों बेच पना ना नाश्ता कूम बोला दी दी दी यूज़न बोला तेरा का इन जी तारिक बे बोला तारिक बे ची तभी रात सुबिसी र बोला दी दी बेच नाश्ता जी वो तो बोला साफ़ चाटो दे पार्सन
2: साफ़ बे नियम के कुंजान वो नियम ये रहा बे कुंतो ना
3: Yom nyasa tukum bau mina asa ni cuma nanas. Mungkin bah mandu sih rusuk kok pada kasih kara. Biasa mana nasa tuh orang sani bulan raya tuh pada kasih kara. Tembah, nanti apa bisa pada kasih kara? Kita. Kita orang jenama mana rombola boleh jenama. Ya tuh betul nggak sih? Yom desa ka manjakalau tuh ada kulkuli. Ah, aku tak kasar tatan.
4: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: तुमको वावी
1: ती हमने रसोमनी ईसा तापका लु ते मंदीकेल ते तापका ते मंदीकेल तापका ते मंदीकेल ते निवाले फितुन रपंगा कंदुरन समाई ता फाउला ने मिचा वचले चिरका पोका रेन सारे नाम ले उल ईसा ना लाव सो ओजो हम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरंभ ये फमिसा चाहुता का मिचो याद का पोका वो ते सामे फाउला ने ताले फितुन रपंगा कहना विशोवे अमान ले तेले स्टार्स पच्ची माना ले वे चिरामान तो कुन्या पिन पिचेसन तार ने अम्नुलना अम्नी अमान ले उलना रे तेले स्टार्स फाय चिर का पोका वे फाउलन तो कुन मंदिंग क्या मिचो माला काश मालोना से सावन मिचा हम सो वचन ने कि तोफ तो वना ये चिरु अम्नी का त्यावना तुम चुचुए तेरा तेरे मंगो माना सुआ फोक सेम फन मिलना तुम चिर तो Patukum tunggal saya nak lihat malah kasman lo nasi sama misa jadi sangat ini tan seru yang mana nulan ciraman soi.
0: Shoto tumpukla, shoto tumpuk vav.

0: तुमको लास तुमको फाफी
1: आइज रेनी ब्यूरो फिक्टिव बेदीबे ते तुम फिर ने फ्रून अंदानी न रज्वेल आइज रेत गवर्नर सांत न पेट कन कंट्रोले न फाउक येरा मदगास्कार उतन तम फनं जातन आइज रा लाला पंड्रेन न निंद्रे नोवा फा Tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsy